0: होन्डा सँगै यो दशैंमा आशाको शुरुआत गरौँ। स्क्र्याच कुपन मार्फत 1,00,000 सम्म जित्ने मौका। चुज एनी वन स्किम अन्तर्गत थप रु 10,000 सम्मको स्क्र्याच कुपन, 7 वर्षसम्म फ्री सर्भिसिङ अथवा 5 वर्षसम्म एएमसी र होन्डाका साथ साथ अन्तर्गत विजेतालाई जितेको रकम प्रदान गर्दै सोही बराबरको रकम होन्डा नेपालले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्नेछ।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
2: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
1: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब ही जाए।
3: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
1: हेलो बहिनी, कता हो तिमीलाई थाहा छ कि नै, सीजी कंपनी को वाई वाई जिंक 15 रुपया में एक पेटी रूपान 560 में उपहार सहित एक कचौरा पनि पाइन्छ। तिमीले कतिमा किन्यौ?
5: मैले त एक पेटी चाउचाउ रु 600 किने।
1: 600 रुपया किन हाल्नु पर्यो? 560 मा त ब्लक नम्बर 14 मा रहेको हरिलाल किराना पसलमा रु 15 वाला चाउचाउ पाइन्छ, त्यो पनि सीजी कम्पनीको गुणस्तरीय चाउचाउ, र त्यस्तै रु 25 को क्लासिक चाउचाउ र 35 को चाउचाउ रु 2500 रुपियाँमा आउँदैछ नि, त्यो पनि हरिलाल किराना पसलमै छ। फेरि 500-600 रुपियाँ वाईवाईमै किन हाल्ने? 460 मामा चाउचाउ हरिलाल किराना पसलमै पाइन्छ, त्यो पनि वाईवाई सीजी कम्पनीको, र रिचार्ज कार्ड पनि पाइन्छ। भुलेर पनि अरू ठाउँमा नजानुहोस् है। होलसेल र खुद्राको दरमा बिक्री गरिनुका साथै क्वान्टिटी अनुसार दर मिलाएर बिक्री गरिन्छ। आधिकारिक विक्रेता
5: हरिलाल किराना पसल, ब्लक नम्बर 14 पार्क रोड टीकापुर कैलाली, संचालक प्रदीप बहादुर विष्ट, सम्पर्क नम्बर 9848404222।

0: राम इलर काफे कब्बू का पिए रही था कब्बू पेंसिल रही था कब्बू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा के ओष्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कब्बू लड़का कॉपी हेरा कई था कब्बू पेंसिल हेरा कई था कब्बू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कब्बू लड़का कापी हरी थी ना कब्बू पेंसिल हरी थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरह ढंग कब्बू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मई नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
3: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक रेडियो टिगापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उक्रम स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हमारो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती हलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से आगामी 3 दिन पानी पर्ना संभावना लगातार झारी भर नहीं पर्ना पागल धान नहीं कटना किसान हुकना आग्रह हिमालयमा विज्ञा पुछरीके सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनवाई विद्यार्थी संख्या सफे गुणस्तरमा ध्यान देना शिक्षा अधिकृतके आग्रह राज्य मन्त्री गिरीसे दुर्गौलीमा होइन ऐतिहासिक व्यापारिक मेलाके उद्घाटन गर्न और टिकापुर सेवा समितिसे टिकापुरमा रसुवा बाढ़ी प्रभावित परिवार हुक्रन 25 बोरा चाउर सहयोग आप पूरा खबर जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के समेत आगामी 3 दिनसम देश के तमाम स्थान में वर्षा के संभावना रहल बता सकल बा। मनो लगातार झारी भर नहीं पर्ना बताइल बा। मौसमविद बेनु महर्जन के अनुसार आगामी 3 दिनसम तमाम स्थान में पानी पर्न संभावना रहले से फिर लम्बा समयसम लगातार पानी भर पर्ना अवस्था में नहीं हो। मनसून बाहर हुईलक मनलक ओर से ढुक्क होके किसान हुकरा अचानक वर्षा हुई पार से कुछ चिंतित हुई बात नहीं। विभाग के अनुसार कर्णाली और पश्चिम प्रदेश के सकू भूभाग तथा गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के पश्चिम भूभाग में पश्चिमी वायु के प्रभाव कायम रहलबा। अब बागमती गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश में कम स्थान तथा कोशी प्रदेश में 1-2 स्थान में मेघगर्जन चट्याङ सहित मध्यम खाल के पानी पर्थ्यो बा। गैल रात के कैलाली के टीकापुर लगायत के आसपास क्षेत्र में पानी पड़ल बा। आज दोपहर के रेसभार साधारणतया मौसम बदलन बा। कोशी बागमती गंडकी लुम्बिनी प्रदेश के हिमाली भूभाग में कम स्थान हो कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमाली भूभाग में 1-2 स्थान में मेघगर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षा के संभावना रहल बा। देश के पहाड़ी भूभाग में कुछ स्थान तथा तराई भूभाग में कम स्थान में मेघगर्जन चट्याङ सहित मध्यम पानी पर्न संभावना बा। अविन्त 1-2 दिन पानी पर्न संभावना रहलक ओर से धान नहीं कटना मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से किसान उकरण आग्रह करल बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार से चालू आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट लड़ना अंतिम तैयारी करल बा। प्रदेश सरकार के बुधवार प्रदेश सभा में समेत बजट पेश करने तैयारी अंतिम चरण में पुगलक बतैल बा। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री प्रकाश रावल बुधवार सबके प्रदेश सभा में प्रस्तुत करना करके बजट निर्माण के अंतिम चरण में पुगलक जानकारी देते आयल बा। वहां के अनुसार आर्थिक मामला मंत्रालय से देलक सीलिंग अनुसार ई आगक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम संशोधन सहित के विषयगत मंत्रालय में बजट प्रणाली में समेत योजना एंट्री करलक बताइल बा। कुछ मंत्रालय भर योजना एंट्री करना बाकी रहल जनाइल बा। सरकार से बुधवार प्रदेश सभा में बजट पेश करना तैयारी कर पाछे कार्यव्यवस्था परामर्श समिति के बैठक बोलागिल बा। बैठक बिहान के 11 बजे सभामुख भीमबहादुर भण्डारी के कार्यकक्ष में बैठी बा। कार्यव्यवस्था परामर्श समिति के प्रदेश सभा के बैठक बोलैना बारे में निर्णय लेना बा। ये आगे तत्कालीन मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह नेतृत्व की सरकार से लानगिलक चालू आर्थिक वर्ष के बजट प्रदेश सभामन से पारित हुई नहीं सकल फाँसे राजनीतिक समीकरण नहीं फेरगिलक एमाले के समर्थन में नेकपा के खगराज भत्ता मुख्यमंत्री बनल रहें बजट पारित हुई निशेकलक पाछे प्रदेश में राजस्व संकलन के काम नहीं रोक गिलक रलसे फिन खर्च कर नहीं पाइल पाछे अधिकांश बजट शून्यता के अवस्था में रहल बतागिल बा। मुख्यमंत्री भत्ता से भदौ मसान्त भीतर बजट लन्ना बाचा करती ऐलक रहें मनो सरकार से असोज के तेसरो साता बजट लन्ना तैयारी करलक हो। टीकापुर सेवा समिति से टीकापुर में रसुआ बाढ़ प्रभावित परिवार हुकरन 25 बोरा चाउर सहयोग करल बा। समिति से ऊ परिणाम में चाउर टीकापुर नगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख राम बहादुर नागर जी है हस्तांतरण करल के हो। सेवा समिति श्रीकृष्ण अष्टमी और गणेश चतुर्थी के कार्यक्रममा संकलित रकम से उचाउर खरीद करके रसुवा पीड़ित परिवार हुक्रन हस्तान्तरण करल। समिति के अध्यक्ष अमित तमत्ता जानकारी दिलेबाट टीकापुर सेवा समिति से टीकापुर में विभिन्न समय में सामाजिक काम करते आयल बा। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पांच फेर सही भी सुनते रह सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: लो इतनी छिटो आमा बन लागो तो सक न सके सब काम कर काम कर विदेश जानु के नगर्ने के झाल में पड़े जस्ते लो राम पढ़ने मेरे साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्योलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौं।
2: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: साधारण सभा सम्बन्धी जरुरी सूचना। टीकापुर स्थित जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टीकापुरको 15 वार्षिक तथा 5 चुनावी साधारण सभा निम्न मिति समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्पूर्ण शेरधनी महानुभावहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। तपसिल मिति 2083 असोज 24 गते शनिबार बिहान ठिक 10 बजेदेखि। स्थान पुरानो हाट बजार नजिक सिटी हल टीकापुर। जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टीकापुर कैलाली।
2: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
4: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
2: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। हिमालय मावि टीकापुर तीन घिया पुछरी के आर्थिक वर्ष 2082-83 में शैक्षिक वर्ष 2082 के सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम हुई बा। सामाजिक परीक्षण में विद्यालय के समग्र सिकाई उपलब्धि 67.64% रहल जानकारी दे गिल बा। कार्यक्रम में सामाजिक परीक्षण प्राविधिक समिति के सदस्य रामविलास डंगौरा से 1,26,17,78 रूपया बराबर के आय व्यय प्रस्तुत कर गिलवा। विद्यालय में 900 भवन 38 ठो कोठा रहल बा। कलशी विद्यालय के नाव में 2 बीघा 2 कट्ठा जग्गा रहल बा। विद्यालय में हाल विद्यार्थी संख्या भर वर्षिनी घटती गई बा। शिक्षक अभिभावक संघ के अध्यक्ष निरपति चौधरी की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में टीकापुर नगरपालिका शिक्षा अधिकृत नरेश अवस्थी सरकार से एक ठो बाचमा समेत करीब 40,000 लगानी समेत करलक ई लगानी सदुपयोग हुई पर्ना बटैटी आयल बा। वहां विद्यार्थी उपकरण के लगनशीलता होके पढ़ल से उत्तीर्ण हुना कर्रा नहीं हुना समेत बटैटी आयल बाट अधिकृत अवस्थी से विद्यार्थी उपकरण की संख्या घटती रहलक और से विद्यार्थी संख्या बढ़ेनक लाख हुई। शैक्षिक गुणस्तर सुधारक लकमा ध्यान देना शिक्षक उपकरण अनुरोध करल बाट ई विद्यालय के सिकाई समेत कृषि संगे जोड़ना करलक प्रयास सराहनीय रहल बतोई थी और विद्यालय से फिर सीखना जरूरी रहल बा। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधान अध्यापक बुद्धि राम चौधरी 2016 साल में स्थापना हुई लक टीकापुर के सामुदायिक में ज्येष्ठ विद्यालय के रूप में रलक बतोई थी। विद्यार्थी संख्या न्यून रहल से फेन विद्यार्थी उपकरण के सैद्धांतिक संगे व्यावहारिक क्षमता के विकास में सहयोग पुग्न बतोई बाट। हाल विद्यालय में 224 विद्यार्थी बाटे विद्यार्थी संख्या घटल पास विद्यार्थी उपकरण प्रोत्साहन करना तमाम कार्यक्रम करती रलक प्रधान अध्यापक चौधरी के कहाबा। वहां विद्यार्थी घटना पूर्वाधार में कुछ जीर्ण बंती जैना घेरा प्रखाल नहीं रलक ओ समेत अभिभावक उपकरण के बाल बालिका उपकरण हे निगरानी में कमी रहल वहां के कहाबा। विद्यालय में गैल शैक्षिक समेत वर्ष में 320 विद्यार्थी रह। कार्यक्रम में टीकापुर नगरपालिका शिक्षा समिति सदस्य जोगी रावल विद्यालय सलाहकार समिति संयोजक बीना थारू, जनप्रकाश आधारभूत विद्यालय के प्रधानाध्यापक रघुनाथ उपाध्याय लगायत से बोलते रहे। कार्यक्रम संचालन शिक्षक सीताराम चौधरी करल रहे। कैलाली की दुर्गौली बजार में पहिल पटक आयोजना हुई लागल दुर्गौली व्यापारिक संध्याकालीन मेला 2083 के उद्घाटन उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मंत्री इंदिरा गिरी से करना कार्यक्रम प्रहलवा कला संस्कृति तथा व्यापार दुर्गौली बजार के मूल आधार कहना नारा सहित आयोजना समेत असोज 21 गते से 31 गते सम हुईना मेला में स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर सम के कलाकार हुकरण के सांगीतिक तथा सांस्कृतिक प्रस्तुति रहना आयोजक से जनायल बा। मेला में तमाम प्रकार के खाइना स्थल वस्तक व्यापारिक तथा कृषि प्रदर्शनी वस्तक स्थानीय कला संस्कृति के प्रस्तुति मनोरंजनात्मक कार्यक्रम लगायत के गतिविधि संचालन में आईन बा। मेला में पुगना दर्शक हुकरण के तमाम प्रकार के स्वाद लेना के साथ व्यापारिक तथा सांस्कृतिक प्रदर्शनी अवलोकन करती मनोरंजन लेना बताया गया। सांझ के समय में विशेष करके सांगीतिक कार्यक्रम सहित के कलाकार हुकरण के प्रस्तुति रहना रलकोर से मेला अवधि भर दुर्गौली बजार में मनोरंजन के विशेष माहौल बनना अपेक्षा कर गया। स्थानीय उत्पादन व्यापार वस्तक संस्कृति प्रवर्धन करती दुर्गौली बजार है थप चिन्हना मेला के महत्वपूर्ण भूमिका खेलना आयोजक के विश्वास रहलबा। मेला है व्यवस्थित व आकर्षक बनाईना आवश्यक तैयारी तीव्र पारगिल जनागिल बा। आयोजक से मेला अवधि भर सहभागी हुके स्थानीय कला संस्कृति व्यापार और मनोरंजन के उत्सव जोड़ना सकु जहन आग्रह करगिल बा। सरकार से भूमिहीन सुकुम्बासी हुकरण की भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी हुकरण के समस्या समाधान है प्राथमिकता धरल जनायल बा। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से सामाजिक संजाल मार्फत हालसम तमाम जिला के 5737 परिवार है जगधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा अर्थात लाल पूर्जा वितरण करल जानकारी देलेबाट निर्वाचन आगे करलक प्रतिबद्धता अनुसार राजनीतिक भागमंड अनावश्यक संरचना थप्न सफे विषय विज्ञ स्थानीय तहकन संगे समन्वय स्पष्ट जिम्मेवारी के आधार में भूमि समस्या समाधान के प्रक्रिया आगे बढ़ना प्रधानमंत्री शाह बटोले भूमि समस्या समाधान समिति हुईल पाछे देशभर के तथ्यांक में एकीकृत रूप में संकलन तथा प्रशोधन हुईतिरल को हालसम प्रणाली में 13,11,197 निवेदन प्रविष्ट हुईल वहां जानकारी दिले बाटे। खोजखर में गरी फैन से विश्राम पास फिर से भी सुनते रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
5: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
6: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
5: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाये
6: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
0: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुस्ता तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुस्ता रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
7: पढ़ाई छुट्यो साथी छुटे सबै छुट्दै गयो मेरो जीवन भविष्य त अन्धकार नै भयो।

0: गरौ भविष्यलाई अन्धकार हामीले नबनाऊ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: विश्राम पासे फेरसे स्वागत बा। ट्राफिक प्रहरी से लगगहा इटी रलक दशई देवारी लगायत के त्योहार है लक्षित करके सुदूरपश्चिम प्रदेश के 27 स्थान में यात्रु सहायता कक्ष स्थापना करल बा। नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय के प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नवराज कार्की से चाड पर्व के बेला में समेत स्वदेश तथा विदेश मन से घर लौटना यात्रुकरण यात्रा में सहजीकरण करती दुर्घटना रहित शहरी संचालन करना उद्देश्य के साथ सहायता कक्षा संचालन में लाल बटवागिल बा। सुदूरपश्चिम में अब त्योहार के बेला ट्राफिक चेक जांच फे समेत बरहल कार्की बटोले यात्रुकरण से तर त्योहार के मौका पाके समेत भाड़ा असूलना सवारी साधन है कार्रवाई करना बटागिल बा। ट्राफिक प्रहरी के अनुसार कैलाली के 10 स्थान हो कंचनपुर के 8 स्थान तथा 7 पहाड़ी जिला में फे यात्रु सहायता कक्षा स्थापना कर गिलबा। आंखी है बाया करी दृष्टि के रक्षा करी गहना नारा के साथ आगामी विफेक दिन असोज 22 गते से तमाम कार्यक्रम के आयोजना करके विश्व दृष्टि दिवस समेत मनाइजे बा। विश्व दृष्टि दिवस हरेक वर्ष अक्टूबर महीना के दूसरा विफेक दिन मनाइना चलन बा। यी वर्ष के नारा में व्यक्तिगत रूप में आंखी की हेरचाह करना प्रेरित करना के साथ सरकारो सरकार वाला सकु जहान के लाग सर्वसुलभ गुणस्तरीय आंखी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना आग्रह करल बा। साथ ही नारा से विद्यालय स्थल नीति निर्माण में हुईना स्थान में आंखी परीक्षण तथा जनचेतनामूलक गतिविधि विस्तार करना फे जोर दे गिलबा। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फेर से। आगामी 3 दिन सम पानी पर्न संभावना लगातार झारी नहीं पर्ना पाकल धान नहीं करना किसान उग्रन आग्रह। हिमालय माविकिया पुछरी के सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनवाई विद्यार्थी संख्या से फिर गुणस्तर में ध्यान देना शिक्षा अधिकृत के आग्रह। राज्य मंत्री गिरी से ऐतिहासिक दुर्गौली के व्यापारिक मेला के उद्घाटन करना हो। टीकापुर सेवा समिति से टीकापुर में रसुआ बाढ़ प्रभावित परिवार हुकरन 25 वर्ष चावल सहयोग। थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान खबर सुन सकिए। खोज खबर से मैं रतन चौधरी विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीका प्रयाग सुन।

0: महिना त दुकान खोज्दै खोज्दै परेशान आटौ, कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ।
1: तुहार बाटा तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मा से गहना बनाएको आन्छे कि कत्रा सुघर बनाएको ल बाटी।
0: ए ले ले ठिकै बा, चल हाली भाटवट खाइ आऊ, जाएका हौ सामुएल ज्वेलर्स मा गर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर, प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए, रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए, वो ऑर्डर अनुसार फे बना जाए। मोबाइल नंबर 9864841208 ओ 9846939261।
2: आरती ब्यूटी एंड कस्मेटिक मा सौंदर्य र श्रृंगार को लागी विभिन्न ब्रांड का कस्मेटिक सामग्री पाइने का साथ है थारू गरगहना पाइन्छ र ब्यूटी पार्लर को सुविधा समेत रहेको जानकारी गराइन्छ।
3: संचालक आरती चौधरी, संपर्क नंबर 9864470483।

0: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वा नन्दी भुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनी ना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वात खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846239261
2: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
3: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
4: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
2: डेलिभरीका लागि
4: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
2: टीकापुर कैलाली
5: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9870 10672
6: स्वास्थ्यका लागि पानी

0: कापी रहिथ कभी पेन्सिल रहिथ कभी झोले फटाका आजिथ काकना हो काकना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरत
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कभू लड़का कभी हेरा कैठ कभू पेंसिल हेरा कैठ कभू झोले फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से नानम तो
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: खाने मन तो कहाँ छ तर के गर्नु जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ फेरि खानै पर्छ
4: तब तो एक्लो कहाँ छ श्रेया त्यति माया गर्ने आमा छिन् दिदी छिन् भाइ छ बरु एक्लो त म छु म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ बाँच्नुपर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ
3: हो र तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र त्यसो भन्छ
4: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त जब म निस्केँ काम गर्न थालेँ अनि पो कमाइ छ त यो कमाई पनि मेरो लागि होइन हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो अब घरजम गर्नु छ श्रीमती छोराछोरी होला उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म
3: ओहो तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिस् यार अब म पनि कुलत छोड्छु आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश

0: Fragrance。
1: बाबू, ए बाबू, कल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
2: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
1: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था, तोर समस्या फेन अस्ते बा, जैबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
3: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
5: पढ़ाई छुट्यो साथी छुटे सबै।

0: से कबू का पिए रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटा का आज का ना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: कबू का पिए रही था कबू पेंसिल ले रही था कबू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: घर त जेन तेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
4: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठभन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
3: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका
4: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
3: अब त म ढुक्क
5: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
4: मोबाइल नम्बर 98481-43426 जमरापारी टिकापुर कैलाली

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था, कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी हरी थी ना कबू पेंसिल हेरे थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटी ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अभी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

0: कार्यक्रम मझेरी
1: मझेरी मझेरी।
2: भैया ना करा रेडू बिगरी
3: नहीं का मम्मी टीकापुर FM से मझेरी कार्यक्रम एक लगबा का
0: थारू गीत के बहार प्रतिभा अनेक अपने के मन में जोन प्रतिभा आई था वो प्रतिभा सुनाई लग आई कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़ै चुरुंगर जानवर के आवाज कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल से सुनाई लग हम फोन करी साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 091-561-255 में डायल करे ना भूलेगी केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूलेगी।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैं तथा शुभ दीपावली 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
2: दाजु, विवाहको तयारी त शुरू भयो, तर पूजाका सामानहरू कहाँबाट ल्याउने होला?
3: त्यसको चिन्ता किन गर्थ्यो बहिनी, मंगलेश्वरी पूजन भण्डार छ नि, त्यहीँबाट ल्याउला।
2: विवाह
3: तथा शुभ कार्यका लागि चाहिने पूजाका सम्पूर्ण सामग्री, माला, टीका, कलश, धूप दीपका साथै ज्योतिषी परामर्श तथा सम्पूर्ण कर्मकाण्ड लगायत आवश्यक सामग्रीहरू एकै ठाउँमा पाइन्छन्।
2: ओहो, त्यसो भए विवाहको पूजाको सामान खोज्दै धेरै पसल धाउनै नपर्ने रहेछ नि।
3: हो नि बहिनी, गुणस्तरीय सामान, उचित मूल्य र आवश्यक सामग्रीको राम्रो व्यवस्था सबैका लागि मंगलेश्वरी पूजन भण्डार।
2: त्यसो भए विवाहको सामान पनि मंगलेश्वरी पूजन भण्डारबाटै लिन जाउँ है।
3: अवश्य, तपाईँको शुभ कार्यलाई अझ मंगलमय बनाउन एक पटक आउनुहोस्।
4: मंगलेश्वरी पूजन भण्डार, टिकापुर 4 चौतारी नजिकै, संचालक छतराज उपाध्याय, सम्पर्क नम्बर 98-66-27-27-99।
5: पर्स हराएको सूचना। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 ब्लक नम्बर 14 बस्ने जितेन्द्र रावलको असोज 12 गते साँझ 6 बजेदेखि 8 बजे भित्र हुलाकी राजमार्ग हुँदै लम्की खकरौला मेन रोडबाट धनगढ़ीदेखि टिकापुर आउने क्रममा फुलबारीदेखि टिकापुर ब्लक नम्बर 14 घर पुग्दासम्म पर्स सहित पर्समा भएको नेपाली र भारतीय सवारी चालक अनुमति पत्र, कृषि विकास बैंकको एटीएम कार्ड र 1090 रूपियाँ सहित गोल्डेन कलरको पर्स हराएकोले भेटाउनु हुने महानुभावहरूले मोबाइल नम्बर 98-12-69-25-57-90-39-40-350 खबर गरिदिनु हुन वा नजिकैको प्रहरी कार्यालय वा सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएममा खबर गरिदिनु हुन अनुरोध छ। साथै पर्स भेटाएर दिने व्यक्तिलाई पर्समा भएको पैसा र अन्य पुरस्कार पनि प्रदान गरिनेछ।
6: साता के बुधवार दिन के 1 बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत।
7: जब देखनो तुहिन है।
6: यदि मन परत हुई कल से अपन मन सुनेना चाहती, कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत, गीत के बोल बताई। गीत मन परना के 2 कारण, वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई, और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी। कल से हमारे गीत अपने पक्के से सुना, तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 0-91-561-255 साता के बुधवार दिन के 1 बजे जरूर डायल करे हुई। कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी। मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाई वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेल इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो दंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
1: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
1: के छ त विकल्प
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौ
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
4: हुँदैन टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली
5: शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह टीकापुरको सदस्यता नवीकरण सम्बन्धी सूचना शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्यहरूलाई यही असोज 10 गतेदेखि 25 गतेसम्म आफ्नो सदस्यता नवीकरण गरिसक्नु पर्ने भएकाले सामुदायिक वनका सम्पूर्ण सदस्यहरूले असोज 25 गते भित्र सदस्यता नवीकरण गरिसक्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ अध्यक्ष कर्ण बहादुर बुढा शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह टीकापुर 2 राजीपुर कैलाली।

0: कार्यक्रम मझेरी
1: मझेरी मझेरी।
2: भैया ना करा रेडू बिगरी
3: नहीं का मम्मी टीका पूरे एफएम से मझेरी कार्यक्रम एक लगबा का
0: थारू गीत के बहार प्रतिभा अनेक अपने के मन में जोन प्रतिभा आई था वो प्रतिभा सुनाई लग आई कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़ै चुरुंगर जानवर के आवाज कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल सुनाई लग हम फोन करी साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 091-561-255 में डायल करे ना भूलेगी केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूले भी।

0: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म मृत्यु विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं। यसले तपाईँ हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वहाँ नन्दी भोज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना आउने न पट्टा नि पैना त
3: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ
2: तुहार बाटा अस्तर आटु वहाँ रामपुरान दिदी ये नि सामुएल ज्वेलर्स में से गहना बना कान से के कतरा सुगर बना कन लबाटी
3: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261।

0: छिछी फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो त
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनो कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 26 20 300 और 98 656 92 026

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के सन्ध्या 5 बजे थारू भाषा खोज खबरमा आफ्नो कन स्वागत बा खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम अपनाउक राब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के सँग अनलाइन मा www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मा फेस सुन्ती रहल बाटी खोज खबर शुरू गरी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से जानकी गाउँपालिका के दुर्गौली बजार मा पहिलो दुर्गौली व्यापारिक सन्ध्याकालीन मेला कालसे शुरू हुइती सुदूरपश्चिम के बजेट भाषण काल 80 दिन के बजेट शून्यता अन्त्य हुईटी कैलाली में चार पर्व लक्षित सुरक्षा योजना 1146 प्रहरी परिचालन संचार मंत्रालय मातहत के निकाय से कार्य संपादन समझौता लक्ष्य पूरा कर कड़ाई कर्जिना ओ एकल महिला और भुआस्कर से संपत्ति फिर्ता करना करपना व्यवस्था खारिज कैलाली के जानकी गाउँपालिका ओडा नम्बर 1 के दुर्गौली बजार में पहिलो दुर्गौली व्यापारिक सन्ध्याकालीन मेला 2083 कालसे शुरू हुई लागल बा दुर्गौली बजार में स्थानीय उत्पादन व्यवसाय व संस्कृति प्रवर्धन कर दी दुर्गौली बजार के पहचान के लाख मेला के आयोजना कर अलग अलग मेला के संयोजक तथा दुर्गौली बजार व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष चन्द्रभान बम जानकारी दिलाबाट कला संस्कृति व व्यापार दुर्गौली बजार के मूल नारा कना आधार कना नारा सहित असोज 21 गति से 30 गति सम्म संचालन हुइना मेला मन स्थानीय थेसे राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हुकन के सांगीतिक तथा सांस्कृतिक प्रस्तुति रहना आयोजक जनैलबा मेला मन विभिन्न परिकार के खाना स्थल व्यापारिक तथा कृषि सामग्री के प्रदर्शनी स्थानीय कला संस्कृति के प्रस्तुति मनोरंजनात्मक कार्यक्रम लगायत के गतिविधि संचालन हुइना आयोजक जनैलबा संजेक समय में विशेष सांस्कृतिक सांगीतिक कार्यक्रम सहित कलाकार हुकन के प्रस्तुति रहना हुईलक वर्षे मेला अवधिभर दुर्गौली बजार में मनोरंजन विशेष माहौल बनना अपेक्षा कैगिल बा ओ मेला संजेक समय में हुईना हुईलक वर्षे व्यवस्थापन तथा सुरक्षा के लागि स्वयंसेवक व प्रहरी परिचालन कलक आयोजक जनैल बा मेला व्यवस्थित व आकर्षक बनाई आवश्यक तैयारी तीव्र पारगिलक जनागिल बा आयोजक मेला अवधिभर सहभागी होकर स्थानीय कला संस्कृति व्यापार और मनोरंजन देना हुईलक वर्षे विभिन्न समुदाय के सांस्कृतिक झांकी के प्रस्तुति रहना जनैलबा मेला अवधिभर संचालन कर्जिना गतिविधि के जानकारी दी है व हुईलक कार्यक्रम के समाचार संप्रेषण के लागि निरन्तर सहयोग र मीडिया हाना आयोजक आग्रह कलबा कैलाली के दुर्गौली बजार में पहिलो आयोजना हुईलगलग दुर्गौली व्यापारिक संध्याकालीन मेला 2083 के उद्घाटन उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मंत्री इंदिरा गिरी कर्णाहुलबाट लम्मा समय थेसे बजेट विहीन रहलक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अनन्त काल बजेट सार्वजनिक कर्णाहुल बा प्रदेश सरकार के चालू आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजेट बुधवार प्रदेश सभा में प्रस्तुत हुई लगलक हो आज बैठक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति के बैठक लेकन काल संध्या 5 बजे बजेट प्रस्तुति के लाख प्रदेश सभा बैठक बोलेना निर्णय कलक प्रभु सभामुख भीमबहादुर भण्डारी जानकारी दिलबाट काल 5 बजे बजेट प्रस्तुति के लागि प्रदेश सभा बैठक बोलेना निर्णय हुईलबा सभामुख भण्डारी कल सरकार बजेट प्रस्तुत कना हुईलपा छ सुदूरपश्चिम करीब 80 दिन थेसे जारी बजेट शून्यता अन्त्य हुना देखिल्बा यीसे आघक सरकार गैलक असार 1 गते प्रदेश सभामा चालू आर्थिक वर्ष के बजेट प्रस्तुत कल रह तर बजेट उप के विवाद के कारण पारित हुई निश्याकल्पा छ सावन 1 गते प्रदेश सरकार बजेट विहीन अवस्थामा पुगल बजेट के विषय में देखगिलक विवाद के कारण कांग्रेस नेतृत्व के सरकार ढलल वाकरपा छ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी के नेतृत्व में लौव सरकार गठन हुईलबा दशैं तिहार व छठ पर्व सुरक्षित शान्तिपूर्ण व मर्यादित रूप में सम्पन्न कराईक लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयन मननन लबा चाड़ पर्व के बेला हुइना यात्रु आगमन बजार में बहना भीड़भाड़ तथा आर्थिक कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्था धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधि व सीमा क्षेत्र में हुइना आगमन हन लक्षित करती प्रहरी सुरक्षा योजना लागू करलक हो सुरक्षा व्यवस्था के लागि कैलाली मन 1146 जना प्रहरी कर्मचारी परिचारण कर्गिलक जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली जनैलबा जोखिम व सुरक्षा संवेदनशीलता के आधार मन प्रहरी हन जिल्ला के विभिन्न क्षेत्र मन खटा जैनबा आवश्यकता अनुसार मोबाइल तथा पैदल गस्ती सादा पोशाक क्यूआरटी स्ट्राइकिंग और रिजर्व टोली समेत परिचालन कना प्रहरी जनैलबा चाडपर्वकै समयमा बजार मुख्य सड़क सार्वजनिक स्थल बैंक तथा वित्तीय संस्था व्यापारिक क्षेत्र बस पार्क लगायत भीड़भाड़ हुना ठाउँमा नियमित तथा आकस्मिक गस्ती बढ़ा जैनबा सम्भावित आपराधिक गतिविधि बारे सूचना संकलन तथा विश्लेषण कर्क आवश्यकता अनुसार तत्काल प्रहरी परिचालन कर जैनबा भारत से जोरगिरक सीमा क्षेत्र मन समेत विशेष निगरानी बढ़ाइना हुईबा चोरी तस्करी लागू औषध तथा अन्य गैर कानूनी गतिविधि नियन्त्रण के लागि नियमित तथा आकस्मिक चेक जाँच गर्जिना प्रहरी से जनागिल्बा चाड पर्व मन घर घुम्न तथा बाह्यजना यात्रु के सहजता वो सुरक्षा के लागि कैलाली के 12 ठाउँ मन यात्रु सहायता कक्ष स्थापना कैगिल्बा सहायता कक्ष से यात्रु मन आवश्यक सूचना तथा सहयोग उपलब्ध करैना के संग हेरैलक वा छुटलक बाल बालिका तथा अन्य मनिनके खोजी तथा उद्धार मन समन्वय गर्जिनाबा वस्तकन अत्यधिक सवारी चाप व सड़क दुर्घटना मध्यनजर गर्ती ट्राफिक प्रहरी संग के समन्वय मन सवारी जाँच तथा सड़क सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बना जैना सवारी साधन के अवस्था चालक मादक पदार्थ तथा लागू औषध सेवन करल निकरल ओ तीव्र गति लगायत के विषय मन निगरानी कर जैनाबा खोज खबर में एक घड़ी विश्राम पाछै निनीबाटी सुन्ती रहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
2: हुँदैन टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एकछेउ भएर हिँड्ने बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने साइकल होस् या गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ
3: जानकी गाउँपालिका 1 नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली टीकापुरमा
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने
4: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
5: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
4: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
5: ईसीजी सेवा
4: डिजिटल एक्सरे सेवा
5: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
4: फोन नम्बर 98484 27359 र 98482 43 59 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टीकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै
6: सुन्नुहोस् न यसपालि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु सिर्जना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे
7: ए हो र गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त
6: हुन्छ नि आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ अनि विश्वासिलो सेवा पनि
7: त्यसो भए आजै जाउँला नि
6: ल अरूलाई पनि भनौँ है।
7: सुनको चमक आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
8: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाए हाम्रो जिम्मेवारी।
7: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 9805943893।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। यही वर्ष के दशमा घर जैना यात्रुनके लागि यही असोज 23 गते से टिकट बुकिङ खुला करगिल बा। यातायात व्यवस्था विभाग आज नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघके अध्यक्ष पुण्य प्रसाद सितौला, विभागके महानिर्देशक राजीव पोखरेल सहितके पदाधिकारी सहित बैठक से यी निर्णय करलक हो। बैठक पाछा महानिर्देशक पोखरेल दशमना यात्रुन के सहज सुरक्षित ओ व्यवस्थित आगमन सुरक्षित गर्ना कर असोज 23 गते से अग्रिम टिकट बुकिङ खुला करगिलक जानकारी देलाबाट वहाँ आज संचारकर्मी से बातचीत बटोइती दशक लागि यातायात व्यवसाय के आवश्यक तयारी हुटी रलक जानकारी करैलक हुइट। दशक समयमा राजधानी से विभिन्न जिल्ला उहर ऐना यात्रुन के चाप बहना हुईलक वर्षे अग्रिम टिकट बुकिङ सवारी साधन के व्यवस्थापन तथा यात्रु सेवा सम्बन्धी तयारी हिन प्राथमिकता देगिलक विभाग से जनाकिल्बा। महानिर्देशक पोखरेल के अनुसार यात्रु सहज रूपमा गन्तव्यमा पुग्न वातावरण बनाई सम्बन्धित निकाय यातायात व्यवसाय तथा सुरक्षा निकाय से आवश्यक समन्वय हुईतिर अलग जनाकिल्बा। यात्रु के चाप मध्यनजर कर्ती यातायात सेवा सम्बन्धित व्यवस्थित ओ सुरक्षित बनाई आवश्यक व्यवस्था मिलेन वहाँ बटुलेबाट। चोरी के मुद्दामा फरार कैलाली के घोड़ा घोड़ी के एकजना पक्राउ परलबाट। जिल्ला अदालत कैलाली के विभिन्न मिति के फैसला से चोरी मुद्दा मन एक वर्ष 6 महीना कैद सजाई 60,000 जरिमाना टोकिलक फरार रहलक घोड़ा घोड़ी नगरपालिका 2 साढ़े पानी बैठना 28 वर्षीय अर्जुन विष्ट पक्राउ पलक फिट। विष्टह जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली के माटहट के कार्यालय से खटगिलक प्रहरी के टोली पक्राउ कलक जनाकिल बा। एकल महिला दोस्रा भ्वाज करलमा सम्पत्ति फिर्ता करपना कानूनी व्यवस्था सर्वोच्च अदालत खारिज करलबा। एकल महिला दोस्रा भ्वाज करलक करलसे पहिलक श्रीमान के सम्पत्ति पहिलक अंश फिर्ता करपना मुलुकी दिवानी संहिता 2074 के दफा 214(2) के व्यवस्था खारिज खुइलक हो। महिला कानून तथा विकास मंच सहित तीनठो संस्था से दायर करगिलक रिट निवेदन के सुनवाई पाछ सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास से ऊ कानूनी व्यवस्था नै खारिज करलक हो। मुलुकी दिवानी संहिता 2074 के दफा 214 के उपदफा 2 एकल महिला और भ्वास करलसे श्रीमान के सम्पत्ति से पहिलक अंश फिर्ता करना व्यवस्था रह। दफा 214(2) विधुवा और भ्वास करल मन निज अंश बापट पाइल के सम्पत्ति उह विधुवा के आगहक पति उहर के लड़का प्रका तथा लड़का प्रका हुईल से ओसिन लड़का प्रका व निहल से निज अपनह मिलना व्यवस्था लेह पैना व्यवस्था रह। तत्कालीन काबू महान्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश शुक्र कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डाक्टर मनोज कुमार शर्मा व डाक्टर नहकुल सुवेदी के इजलास से 21 बैशाख 2083 संहिता के उक्त व्यवस्था खारिज कैगिल रह। तीन संस्थाओं से दावी करल अनुसार दिवानी संहिता में हुईलक ऊ व्यवस्था मुलुकी एन में हुईलक अधिकार के समेत कटौती हुईलक हो। जी से महिला न अधिकार थप खुमचैगिल रह। मुलुकी एन के अंश बंडा के महल के 12 से विधुआ महिला के अंश के व्यवस्था करलक मन पाछक संहिता एन उन आमीन विस्तार करपना संकुचित पारगिल रहलक सर्वोच्च अदालत में पारगिल गई का सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन पेश हुईगिल रह। सर्वोच्च अदालत दिवानी संहिता में हुईलक व्यवस्था से नेपाल के संविधान में हुईलक व्यवस्था बाजगिल वा नै बाझल कहिका लम्मा समयसम्म विवेचना कैगिल नेपालके संविधानके धारा 16 अर्थात सम्मानपूर्वक बाँचपैना हक, धारा 18 अर्थात सम्पत्तिके हक ओ धारा 25 अर्थात सम्पत्ति के हक से देवानी संहिता के दफा 214 के 2 के तुलनात्मक अध्ययन करलक सर्वोच्च अदालत। संविधान से एन के उ प्रावधान बजना निष्कर्ष निकलक हो। सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास से मुलुक की देवानी संहिता के उ व्यवस्था से हरेक मनिन्हन भज करना, परिवार कायम करना व पारिवारिक जीवन यापन करना स्वतंत्र राज्य कुंठित कलक निष्कर्ष निकलबा। निर्णय के पूर्ण पाठमा कैगिलबा अंश बाफत के सम्पत्ति फिर्ता करपना, परिस्थिति से एकल महिला न आर्थिक रूपमा कमजोर बनैना वो और भुआज मन निरुत्साहित कना अवस्था होयाबा। ऊ व्यवस्था समानता के सिद्धांत विपरीत रहलक निष्कर्ष सहित सर्वोच्च अदालत कहलबा। ऊ व्यवस्था नेपाल के संविधान कलक सम्पत्ति के हक के रोहबरमा ह्यारबेर असंगत ओ अस्वाभाविक कानूनी प्रतिबन्ध देखागिल। संवैधानिक प्रक्रिया से निरपेक्ष स्वामित्व स्थापित हो सकलक। अनसह एकल महिला और बहस करल कारण वाकर वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन करल कारण मृत पति के छाई छावा के नाव में संपत्ति फिर्ता कर लगाई नहीं हुईना कई गिलक हो। सर्वोच्च के पूर्ण पाठ में कहलबा ओसी का कानून में बंदेश लगना संविधान के धारा 25 द्वारा प्रत्याभूत संपत्ति के हक के सारभूत मर्म ऊपर के प्रहार हुई सकत। स्वच्छ खबर में फेरफेर विश्राम विश्राम पाछा निनीबाटी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
9: घर त जेनटेन लगाइयो, अब झ्याल ढोका को लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महंगो, के गर्ने के नगर्ने?
10: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाई? काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
9: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका?
10: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
9: अब त म ढुक्क।
11: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी टिकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर मोहनदास भाट,
10: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरापारी टिकापुर कैलाली।
12: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
13: कार्तिक 7 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
12: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
13: डाक्टर आउने दिन कार्तिक 7 गते पहिलो शनिबार।
12: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक, अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की ऐना दिनमन इन्टरनेट विद्युतीय मतदान के दिशामन आघ बर्नाबरिलेबाट निर्वाचन आयोगके मंगलबार इन्टरनेट मतदान प्रविधि तथा निर्वाचन व्यवस्थामा सूचना तथा संचार प्रविधि के प्रयोग सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण प्रविधि प्रदर्शन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुइलक हो। जीएन सम्बोधन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की असीम प्रतिबद्धता जनाइलक हुट। इन्टरनेट मतदान प्रणाली कार्यान्वयनकै लागि आवश्यक प्रविधिगत तयारी, संस्थागत क्षमता विकास, साइबर सुरक्षा तथा सम्बन्धित निकाय बीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहलक उहाँके कहाइबा। ऊ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै निर्वाचन आयुक्त डाक्टर राजीव सुब्बा इन्टरनेट मतदान प्रणाली कार्यान्वयन करबेर निर्वाचन आयोगमा कल निहोक नेपाल सरकारकै विभिन्न निकायमा उपलब्ध आईसीटी सम्बन्धी ज्ञान, सिप, जनशक्ति तथा प्रविधि क्षमताके नक्साङ्कन आवश्यक रहलक बटुइलबाट। वहाँ इन्टरनेट मतदान प्रणाली बहुआयामिक वा अन्तरनिकायसे सम्बन्धित हुइना हुइलक वर्षे डिजिटल पहिचान, मतदाता प्रमाणीकरण, डाटा आदान प्रदान, साइबर सुरक्षा प्रणाली विकास, पूर्वाधार तथा संचालन लगायतकै क्षेत्रमा सम्बन्धित सरकारी निकायमा उपलब्ध विशेषज्ञता ओ सिपके पहिचान गर आवश्यक रहलक बटुइला फुइट इन्टरनेट मतदान प्रणाली कार्यान्वयन उहर आघ बरहबेर आवश्यकपना प्राविधिक जनशक्ति विशेषज्ञता ओ संस्थागत क्षमताके पहिचान तथा उपयोग गर आधार प्रदान गर्न उहाँके कहाइमा सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा वा संचार सचिव राजेन्द्र कुमार पौडेल बीच आर्थिक वर्ष 2083-84 के लाग कार्य सम्पादन सम्झौता सम्पन्न हुइल्बा उह अवसरमा संचार सचिव पौडेलसे मन्त्रालयके महाशाखा प्रमुख तथा मन्त्रालयके माताहतके विभिन्न निकायके प्रमुख फे कार्य सम्पादन मन सम्झौता कर्लबाट संचार सचिव पौडेल से नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के अध्यक्ष अर्जुन घिमिरे नेपाल टेलिकम के प्रबन्ध निर्देशक संगीता पाण्डे संगीता पहाड़ी अर्याल सुरक्षण मुद्रण केन्द्र के कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगाना राष्ट्रीय समाचार समिति के महाप्रबन्धक संदीप राय सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष उर्वशी बस्नेल गोर्खापत्र संस्थान के महाप्रबन्धक हिक्मत बहादुर रावल ओ विज्ञान बोर्ड के अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठ कार्य सम्पादन सम्झौता कर्लखुइट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उद्धार उत्तरदायित्व ऐन 2076 तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077 के व्यवस्था अनुसार मन्त्रालय के कार्यक्रम ठप जिम्मेवारी परिणाममुखी व मापनयोग्य बनाई कार्य सम्पादन सम्झौता कैगिलख आज मन्त्रालय के आयोजित कार्य सम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर तथा आदान प्रदान कार्यक्रममा संचार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा कार्य सम्पादन सम्झौता हुन औपचारिकतामा सीमित निकैकन सम्बन्धित निकायके दैनिक कार्य सम्पादन व वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति के महत्व पूर्ण मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में लिहेपना बटुइलाबाट समाचार के संग खोज खबर और आयल अंतिम जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से जानकी गांवपालिका के दुर्गौली मन दुर्गौली बजार पहिलो दुर्गौली व्यापारिक मेला व्यापारिक संध्याकालीन मेला कालथी से शुरू हुई थी सुदूरपश्चिम के बजेट भाषण काल हुईना 80 दिन के बजेट शून्यता अंत्य हुई थी कैलाली में चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना 1146 प्रहरी परिचालन संचार मन्त्रालय मातहत के निकाय से कार्य सम्पादन सम्झौता लक्ष्य पूरा गर्न कडाई गर्जिना ओ एकल महिला और भास्कर लसे सम्पत्ति फिर्ता करपना कानूनी व्यवस्था खारिज लिताबकला थारू भाषक खोज खबर अत्र और समाचार 6 बजे नेपाली भाषामा खोज खबर सुन सक्बी आबक खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद देती मै गीताफी विदायती सामुदायिक रेडियो टीका एफएम सुन्ती रवि राम राम
3: मानिस हराएको सूचना टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 निवासी 91 वर्षीय चन्द्रदेव रेग्मी असोज 20 गते बिहान 9 बजेतिर घरबाट निस्केर सम्पर्कविहीन हुनुभएकाले भेटाउनु हुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा मोबाइल नम्बर 98584-21877 खबर गरिदिन हुन अनुरोध गरिन्छ।
14: पढाई छुट्यो साथी छुटे सबै छुटे।

0: भविष्यलाई अन्धकार हामीले नबनाऊ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश। आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिज्जा सेक्ल।
2: अरे का करुरी बुढिया, कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिल्बो मिल्बो नि करत का कैन हो का?
1: मिस्तरान वर्जन हुकन घर हेरो न, कटरा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न, ओट्रफे पटानी हुइन कि गुङ्गुवा बुढो हो न, कबु कहुँ र घुम जाए त थाहा पाए।
3: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगी पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
4: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848 5146।

0: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म मृत्यु विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं। यसले तपाईँ हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: Coffee ready.
3: Wow, thank you. यो साँझलाई अच्छे सुगन्धित बनाउँछ मंगलदीप सेन्ट 3-in-1 को साथ।
2: I love the scent.
3: I love it too. हामीलाई मन पर्छ भने भगवानलाई पनि मन पर्छ।
2: मंगलदीप सेन्ट 3-in-1 perfume like fragrance.
4: बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे भोज आगिलिन अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना उनेना पट्टा नि पैना त
5: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
4: तुहार बाटास तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे कि कत्रा सुघर बना कन ल बाटी
5: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भाटवट खाई आऊ जाई कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
4: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684-41-208 98486-39-261।

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: बड़ा दशैं तथा शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा समस्त उपभोक्ता वर्गमा सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
2: ए बहिनी, दशैं तिहार आइसक्यो, केही किनमेल गर्ने योजना छैन?
3: छ नि दिदी, तर कहाँ किन्ने?
2: कहाँ किन्नु नि? यसपालि त टिकापुरमै गएर एनएस गोल्ड एन्ड सिल्भर उद्योगबाटै किन्ने हो।
3: त्यहाँ के छ र त्यस्तो?
2: त्यहाँ त राम्रो मेसिन द्वारा राम्रो डिजाइनका विश्वासिलो गरी हार तिलहरी पोते चन्द्रहार नौगेडी रानीहार टप बाला औठी सिक्री नथिया लगायतका आकर्षक गहनाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्।
3: ओहो, त्यसो भए यसपालिको दशैंमा एनएस गोल्ड एन्ड सिल्भर उद्योगमै जानुपर्छ।
1: एनएस गोल्ड सिल्भर उद्योग सञ्चारी पसल सरकारी अस्पतालको गेट अगाडि कुजिआर मेडिकल भएको घर संचालक गणेश साहू फोन नम्बर 98-22-83-10-54।

0: बुका पिएरै ठक बु पेन्सिल रै ठक बु झलै फटाका आजि ठक काकना हो बाबा फ्यु ओस्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से त लड़का सामान निहरै
1: ओहो ई बुढा लिखबे का हुई थी जरम भर भर बरैती रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कै ठक बु पेन्सिल हेरा कै ठक बु झोलै फटाका ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नि छिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो ओ त कहाँ टीकापुर म रलक रडगैया झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दिदी कटरास गोर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का का पिएरै थी ना कबू पेन्सिल रहिथिन ना झोला फाटल हुईन कैक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373